0: करण कारण पतित पामन भगत वश्यल कृपन धान दीना बंधु हलत पलतक रक्षक निरंजनी ज्योत तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी अपार कृपा दा सदका है। दिन दे पिछले पैर दे संध्याकाल समय दीवान सजे हन, सज रहे दीवान विच अलाही बाणी सुधर रहे राज साहिब दा पाठ जो सेवा वाहिगुरू ने सत्कारयोग ग्रंथी साहिबान सिंह साहिब भाई गैनी मनदीप सिंह जी तिन्हां कोलों लई है। आरती ते आरते दा कीर्तन शब्दां दा कीर्तन श्रवण कर रहे सो हाजरी पा रहे सन सत्कारयोग सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दरबार साहिब जी दे हजूरी रागी जथे सो भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी बड़े प्यार वाले गुरु दे सिंह हन, तिन्हां ने आनंदमई रसपे ने कीर्तन द्वारा हाजरी भरी है। समा हो रहा है बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, गुरु कियां कथा कहानियां कह के सुन के पुत्रां तो सपुत्र बणीए। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। साहिब गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी किवें प्राप्त हुंदी है, बख्शिश किवें मिलदी है, कथा चल रही है। जदों इतिहास आपां पढ़दे हां श्री चंद जी बाबा लखमी दास जी ये मन च ख्याल रख बैठे कि असीं गुरु नानक देव दे सपुत्र हां, सानूं सेवा ते आग्या मनण दी की लोड़ है। निम्रता वाले लहणा जी इह दात लै गए। साहिब गुरु अंगद देव साहिब दे सपुत्र बाबा दासू ते बाबा दातू जी ये भी माण च रह गए कि साढ़े पिता जी गुरु ने सानूं की लोड़ है। सेवा दी दात बजुर्ग अवस्था च बाबा अमरदास जी लै गए। धन गुरु अमरदास साहिब दे साहिबजादे बाबा मोहन जी बाबा मोहरी जी वह भी इस दात तों खाली रह गए, सेवा लै गए सतसंगियो धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज। श्री गुरु रामदास जी बीबी भानी जी दे तीन सपुत्र ने, बाबा पृथ्वी चंद जी बाबा महादेव जी धन श्री गुरु अर्जन देव जी। हरेक गुरु साहिब ने प्रीख्या ली है, इम्तिहान लिया है, जिहड़ा पास हो गया तो उन्होंने गुरता गद्दी मिल गई। राम राय ते सतसंगियो गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ये दात लै गए गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज। इस तरह पृथ्वी चंद के ना करन ते छड़िया सुभा कपटी सुभा पदार्थवादी सोच तो गुरु जी की बख्शिश तो खाली रह गए। सो चिट्ठियां गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर तो भेज रहे ने, दो चिट्ठियां पृथ्वी चंद जी ने कोल रख लिया, तीसरी चिट्ठी सच्चे पातशाह जी दे कोल सिख ने सियाणप दे नाल पहुँचाई, गुरु जी ने पढ़ी उहदा सिधांत तात्परज। गुरु महाराज ने वेख्या कि किन्ना अंदर प्यार है साढ़े दर्शन दी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: मुहे रहन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुरु दरबारे जियो, हो कोली जियो कोल कमाई ते सच्चे गुरु दरबारे जियो। बाबा बुढ़ा साहिब नूं कोल सद्दिया ते जिवें बाबा जी लाहौर तों गुरु अर्जन देव साहिब नूं लैण वास्ते जा रहे ने, बड़ी रौचक प्यार वाली कथा आ रही है। रसना कर लईए पवित्र, गुरु चरणा का ध्यान करो, प्यार नाल बोलो सतनाम।

हाँ बाल बाल गुर दरसाए ना गुर की सेव ना जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए लय सो सेवका जिस वट भाग मथाए ना गुर की महिमा भेद ना जान है तुच्छ मात सुन सुन वखाण है पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलाए न जाकी सोए सुनी मन दीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुख अलाए।

काल अकाल सोच सोचा सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलाख ना लखिए एक खना करन करावनहार स्वामी सगल कटाके।

गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द भ्रम ताका भागै, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सो धनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सो पूर करम्मा ना छिना, जालथल महियल

0: कुमार खेल चतुर भुज कहाया, सावल सुंदर स्वरूप बनावे, बेण सुनत सब मोहैगा, बन माला बिभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकट बैन, संख चक्र गदा है धारी, महासारथी सतसंगा, पीत पीतंबर त्रिभवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुख भणी, सारिंग तर भगवान बीठुला, मैं गणत न आवै सरबंगा, ने कंटक ने केवल कहिए, तनंजय जल थल है महिए, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थिर थान जिस है अपग्गा।
1: अपग्गा पबित्र का प्रभाव दे के अपग्गा ही उच्चारण करना।
0: पतित पावन

आद्यंत मध्य प्रभ सोई आपे करता करे सो होई ब्रह्म पाओ मिटिया साध संग ते दालद ना कोई काल का उत्तम बाणी गाओ गोपाला साध संगत की मंगहर वाला बासन मेट निबासन होई है कलमल सगले जाल का संता की एह रीत निराली पार ब्रह्म कर देख है नाली सास सास आराधन हर हर क्यों सिमरत की जय आल का जय देखा तह अंतर जामी निमख ना विसरह प्रभ मेरे स्वामी सिमर सिमर जी वह तेरे दासा बन जल पूरन थाल का तत्ती वाओ ना ताको लागे सिमरत नाम अन दिन जागे आनंद विनोद करे हर सिमरन तिस माया संग ना ताल का रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाही

आठ पहर हर हर कौ त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हिरदय नित धारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प

0: सहज वनस्पत फुल फल पावर वसै पै खंड।
1: वनस्पत पाठ ही करना, वनस्पत नहीं करना। सहज वनस्पत फुल फल पावर वसै पै खंड।

सर्वे जो अगछमी दूह कंढेरो आथ कालर लादस सर लागना लाभ न पूजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटाओ दरब अपार नानक वखर निर्मलाओ।

इस जग मैं संति धन खटिया जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर साच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए एत धन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए जिना कौ तुर लिखिया तिनी पाया आए मनमुख जगत

0: गन राम खिलौना जा रहा। अगर राम खिलौना है तो खिलौनिया नाल बच्चे ही खेड़ देने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है, खिलौना खेड़ना है। मंदा परचावा, सिर्फ मंदा परचावा। जैसे बच्चा खिडौनिया नाल खेड़ रहा है मंदा परचावा, इस जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इस दे परचावे जरा वड्डे ने, इदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है, और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है। ताए खेड़े, क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां, कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार, तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है, खेड़ना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना जवानी वृद्धावस्था, समाजिक जीवन रेच, राजनीतिक जीवन रेच, धार्मिक जीवन रेच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लईए ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया ने, परमात्मा नू जानिया ने, जानकारी बहुत कठी कीती है, और कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा, पर सेकंड तो कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनू शरीर दी कोई समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनू कोई थोड़ा जा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनू कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। यह इसनू इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां चुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदे अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नू भी मैं ज्ञान आख्या उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जाती है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया, ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दिया इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है, वह मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसी मां दी गोद विच उसका बच्चा, एक मासूम बच्चा, और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद विच लिया है, अज जमे है, एक दिन दा है, दस दिन दा है, पंद्रह दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद विच है, सो रहा है मां दी गोद विच, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं, पिला रही है, रिजक दे रही है दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है, परचा रही है, खिड़ा रही है अपने हथा नाल, पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए बहुत सारिया नु कोई बोध नहीं, असि कित्थे हां, किस दे हथा दे चा, किस दी गोद दे चा, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं, मुंह दी जबान है बोल नहीं सकता, हाथ है गए ने कुछ भी नहीं कर सकता, पैर है गए ने चल नहीं सकता, दिमाग है सोच नहीं सकता, कान है गए ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हू कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारिया ना धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है, ये असी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गया है, लेकिन ये सब कुछ की है कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। इस तरह हो रहा है जैसे गोद देच बच्चा है, दूध पी रहा है, खिड़ाया जा रहा है हथां देच, सुलाया जा रहा है गोद देच, पर उसकी अवस्था जो सब कुछ अचेतमयी चल रहा है, दूध पीना भी अचेतमयी चल रहा है, हथां देच खेड़ना भी अचेतमयी चल रहा है, धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत ते खड़े ने, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी ते मिलना चाहिदा है, बच्चे दा जन्म हो गया है इस कुल कोई समाजिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है एदे कुल कोई राजनीतिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है एदे कुल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है लेकिन जिसनु कहंदे ने जिंदगी ए नहीं है, जिसनु कहंदे ने जीवन ए नहीं है, ए ते विकसित हो गया, फिर जिस अज समा होवे लगेगा, लेकिन ऐसा देखण दे चाया है विकास हो जांदा है समाजिक जीवन दा, रिश्तियां दी समझ आ जांदी है, ए मेरी मां है, ए मेरा पिता है, ए मेरी बहन है, ए मेरा भरा है, अखां खुलदियां जा रहियां ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां दी सोच समझ वधदी जा रही है, ए मेरा मित्र है, ए मेरी पत्नी है, ए मेरा पड़ोसी है, लेकिन ए मेरा परमात्मा है, धार्मिक तौर ते अजे भी अनजान रह जांदा है, अजे भी मासूम रह जांदा है, अजे भी जो है बच्चा रह जांदा है। एक दिन राजनीतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जांदा है, सियाणा हो जांदा है, और राजनीतिक लोगां दीआं गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता, आज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी और बड़े कीमती उसके बोल ने आज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी एको ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, एको ही मनोवृत्ति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा है, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुर्दमे नहीं आउंदी क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है, राजनीतिक लोगों के बोल हवा के गुब्बारे दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जाता है राजनीतिक तल ते, एक दिन इस नूं बोध हासिल हो जाता है समाजिक तल ते, और इसे ही बोध देच जीवदिया जीवदिया अपनी जिंदगी का अंत कर बैठता। एक दिन धार्मिक जीवन अपनी शिखर नूं छूंदा ही नहीं, कईयां दे अंदर ते यह जीवन पैदा ही नहीं आउंदा। कदी मंदिर गए ही नहीं, कदी मस्जिद विच नमाज पढ़ी नहीं, कदी गुरु द्वारे विच गुरु दी झलक वेखी ही नहीं, कदी कीर्तन सुनिया ही नहीं, कदी कथा दी तरफ कन ही नहीं कीते। ए उसका कदी शौक ही नहीं बनया, जन्म ही नहीं होया। होया जन्म शरीरक, होया जन्म समाजक, होया जन्म राजनैतिक, धर्म दा ते अजे कईयां दे शरीर दे जन्म ही नहीं होया हुंदा। पर जे हो भी गया जन्म तो जीवन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हो गया जन्म लेकिन हे प्रभु अजे मैनू चलना ते आया ही नहीं, तेरा दामन पकड़ना ते आया ही नहीं, तैनू वेखना ते आया ही नहीं। अगर एक बच्चे नू मां मां नहीं दिखाई देंदी, प्यो पिता दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, अचेत अजे नवजायद है, अजे इसनु कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी समझ नहीं, गुरु गुरु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, प्रभु प्रभु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा। इसनु कहना पेगा धार्मिक तल ते अंधा है। कोई राजनीतिक तल ते भी अंधा हो सकता है, कोई समाजिक तल ते भी अंधा हो सकता है। पैन पैन नहीं दिखाई देती, पैन नाल भी गलत व्यवहार करता है, मां नाल भी रिश्ता इसका ठीक नहीं, पिता पिता नहीं दिखाई देता इस नाल भी संबंध गलत ने, पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देती, पति पति नहीं दिखाई देता। कई समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, बिरा बिरा नहीं दिखाई देता, मित्र मित्र नहीं दिखाई देता, पुत्र पुत्र नहीं दिखाई देता, और इना नाल ऐसा अनाचार वो कर बैठते ने, बिरा बिरा नाल नहीं कर सकता, एक प्यो पुत्र दे नाल नहीं कर सकता, एक पति पत्नी नाल ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, पर एक पत्नी इस ढंग नाल पेश नहीं आ सकती। तो कई ते समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, समाज दे रिश्ते भी नहीं दिखाई देते, कई राजनीतिक तल ते अंधे होंदे ने, लेकिन बहुते अंधे धार्मिक जगत दे च मिलणगे। इस वास्ते गुरु नानक ने ते ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमो को थे जाए। धार्मिक दुनिया दे ते सारे ही सूरदास बने हुए ने, अखां बंद खुलिया ही नहीं, ना प्रभु दी झलक न गुरु दी झलक, अजे धार्मिक तल दा जीवन प्रगट ही नहीं होया।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
3: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack two ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com. An initiative of Pulse FM Cares.
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Goodale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Goodale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at goodalebaudgroup.com.

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नू पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीरत साहब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिबलाई उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के
अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी की भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ की गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती लई सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावा सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया। तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है कि असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थो तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दित्ती ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी
ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਕੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਖੂਨ ਸੁਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਉਸ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नू पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक हो के ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले।

भाई साहब ने चौथा वचन कीता, कह लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आंदा है, जितना मोर उनू देख के खुश हुंदा है। हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है? वह असमान दे उते, वह धरती दे उते, जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नू देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नू देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, उह वी बदलां नू देख के उची उची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी वी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर वी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है? भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, न्यो कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है? पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभण वाली, ओ रस्ते विच टुटण वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगता सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना वा कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दिया रहाओ दिया तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा, गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वर्तने हैं, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने, कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा, ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है, मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, सच जाणियो ओ खाए भी पीए भी बोले भी, पर गुरु दी नजर विच एक ओ जींदा लाश है, ओ मुर्दा।

Eso, eso, cookie. No soy ella, sir. Rat dinas ke kookane tabe ke sone puka. Kabir kendra mein din raat boli jana kaiso, kaiso, kaiso. Main to boli jana. Boli jana. Kisi din te kaid bane. Kisi din te kaid bane. जगत विच असी पहले वेखने हां फिर बोलदे हां प्रभु नाल ते पहले बोलना पेगा बोलदे एक दिन दिखाई दे सामने खड़ा बिल्कुल नहीं कटते तो मैं अर्ज करा जैसे बोलण दा फुरना पैदा हुंदा है पवन नाभी नाल टकर उत्थो धुन उठदी है उन्हों कहंदे ने परा धुन उठ के जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों कहने ने पसंती इत्थे उसनों शब्द मिलते हैं अल्फाज मिलते हिरदे तो उठ के बोल वाक जद कंठ तक पहुंचता है इन्हों मधमा कहने ने वाक पूरा बन जाता है जो कहें जबान इसनों बयान कर देती है इन्हों बैखरी कहने परा संति मधमा बैखरी इन चार बाणियां कहने परा ही पसंती बनती है पसंती ही मधमा बनती है और मधमा ही बैखरी बन पवन टकराई नाभी ने धुन पैदा हुई पर पहुंची हृदय तक अल्फाज मिल गए ये बन गई पूरे का पूरा वाक बन गया जो कहना है कम अंदर बड़ा तेजी नाल आंदा कंठ तक पहुंचे इनू कहंदे ने मधु जबान ने बयान कर दिता इनू कहंदे ने बैखरी धुन बाहर आ गई जबान दे जो नाभि तो उठी सी हिरदे ते कंठ दे च पहुंच गए रसना दे राही

हर जन मंगल गावो, ईश्वर नाही कबू ही एते, एह बिद मन मैं पावो, गुर पूरा पिट्यो वड भागी, जन नानक कतह ना थावो, गुर पूरा

अखो सतनाम श्री समन समाप्त हो गया है, पर पंज सत मिनट में तुहाडे लेने ध्यान नाल सुन, ये जरूरी नोट करियो। आपां सारे ही स्कूलां विच पढ़े हैं, तुहाडे बच्चे भी पढ़ते हैं। जिहड़ा बच्चा स्कूल तो घर आके होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है? फेल। ताइयों आपां कहिंदे बेटे होमवर्क करो, ट्यूशन रखो, दो दो तीन तीन ट्यूशनां रखियां सबजैक्टां ने। जिहड़ा बच्चा स्कूलों आके घर विच होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट फेल। ते याद रखियो, आपां अरदास करके जे घर जाके आपां नाम ना जपिया रिजल्ट अपना भी फेल है, तुहाडा भी ते मेरा भी। जे आपां घर जाके वाहिगुरू नूं ना जपिया रिजल्ट, तुहाडा भी फेल ते मेरा भी फेल। जे आपां गुरु की बाणी ना पढ़ी अपना रिजल्ट फेल होना है। आ हुण वेखियो तुसीं, इन्हां महीनियां च रिजल्ट बच्चियां दे निकलदे, जिन्हें पूरा साल पढ़िया है उहदे नंबर भी चंगे आउंदे। भाई जिन्हें पढ़ाई नहीं कीती उहदी कोई डिवीजन नहीं। इह गुरु दा दर है। इत्थों आपां होमवर्क लैके जाणा है। होमवर्क किहने दित्ता है? श्री गुरु रामदास महाराज ने। की दित्ता है? कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो, गुर सतगुर का जो, नॉट गुर सिख, सिख जिन्हें सीखना शुरू कर दिता, जिन्हें गुरसिख बन दे रस्ते ते तुर पे, भावे अजे अमृत नहीं छकया, सिख है भाई, वह सीखन लग पे। पढ़ो, वह की करे फिर? की कला गुरुद्वारे मत्था टेके? नहीं। पढ़ो, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पल के उठ हर। एदा मतलब तुहानू याद है, सो पल के उठ हर नाम ते आवे उदम करे पल के पर पाती।

आया हूं वर्क। उठदिया बहिंदिया वाहेगुरु कहने, जे वाहेगुरु ना कहा जदों गोडिया ने जवाब देना फिर हाए हाए कहने, होर नहीं होना फिर कोई। जे वाहेगुरु कह लग पे फिर मेनू नहीं उम्मीद, गोडिया ने जवाब ही नहीं देना। तुसी हाए नहीं कहोगे कदे, फिर वाहेगुरु कहोगे। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। दिस इज यू आर होमवर्क, ये तुहाडा होमवर्क है कि जदों सवेरे नींद चो जाग खुले, चार बजे, पांच बजे, छे बजे जदों उठदे हो, उठदिया सार तुहाडा फर्स्ट वर्क एवरी डे ये होना चाहिए। अपने मंजे बैड ते बह के दो चार मिनट कह लिया करो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कह लोगे भाई, जप लोगे सवेरे, सवेरे जप लोगे जिन्हें सुनते, जेडे लाइव ते सुनते भी जप लियो भाई। मैनू पता है लाइव ते भी बहुत सुन रहे, तुसी जप लोगे सवेरे जदों नींद चो जहाग खुले, वाहेगुरु कहने। ये तां कहे होने, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठर नाम त्यावे, तां त्या होने जे सवेरे उठ के वट्सअप ना चलावे। ते जे चलावे वट्सअप, जे सवेरे उठ के कलेश बुक देखनी है, फिर नहीं वाहेगुरु कहे होने। मोबाइल रखियो दूर, जदों सवेरे नींद चो जहाग खुले मोबाइल बाद में चकने, पहला दो चार मिनट कह लेना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ठीक है भाई, कह लोगे हथ खड़े करके जकारा छोड़ो, सवेरे वाहिगुरु कहोंगे आप। वाह वाह, बोले।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियां सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछै पावै,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावै,
1: एक भीना दे दस पी हिरले,
0: तो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रम मीठा,
0: सर्व सुखता हु मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व थोक नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: आत पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कछ बहु शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागे रखे,
0: रोकी आज्ञा मन नै मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: अनक भांत माया के हित,
0: सर पर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपटर होत अंधे अंधार,
1: घटाऊ से जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
0: कर कृपा।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी।
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रै लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजय
1: करके गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आये
0: कर कृपा प्रभ आप मलाये
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण हो ही सेवक की सेवा
1: आज जाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभधारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ये पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: दुनिया दे सब तो वड्डी अकल चाहिदी है प्रभु नु समझण लई गुरु नु समझण लई। इस चक्कर च ना पैना मंदिर दे च भीड़ है गुरुद्वारे दे च भीड़ है मस्जिदां दे च भीड़ है बड़ा धार्मिक जगत है गुस्ताखी माफ धार्मिक जगत है धर्म दी समझ रखे बिना धर्म दे बोध तो बिना धार्मिक इकट्ठ धर्म दी समझ तो बिना धार्मिक इकट्ठ समझ तो बिना बोध तो बिना है धार्मिक इकट्ठ धर्म दी समझ कोई नहीं। जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ही ना होवे मां है पिता है कि चाचा है ताया है पुत्र है भैन है भरा है ये मामे ने मासियां ने इसकी समझ ही ना होवे बहुत वड्डा समाज दा इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ना होवे वो इकट्ठ सारे दा सारा बेमैने बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च धर्म की समझ ना हो धर्म का बोध ना और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए है जमीन देते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने नहीं ने जितनिया मस्जिदा ने जितने मंदिर ने जितने गुरुद्वारे ने जितने जैन मंदिर ने जितने बौद्ध मठ ने जितने सनातन मंदिर ने जितने चर्च ने जितने सिनोवाग ने इन्ने धार्मिक मंदिर और हर शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए होंदा ते है चंदन दा बूटा ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਦ ਮੁਲਕ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਬੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੀ ਬੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਪੋਸ਼, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਹੀਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਦਨ ਤਰਨ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਏ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ, ਬੜੀ ਗਾਲਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੋ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ 1,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਠ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋ ਜੀ ਨਾ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, कुछ उद्यम करो, उपराले करो। असी अरदास दे चे शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते तेरे, जिन्ना मिलिया तेरी याद चल पाए, जिन्ना दे संदनिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। मुख्तसर में अर्ज करा, धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है, सेवा नाल बनते ने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदां, दान नाल, दान सेवा है, मेहनत नाल धन कमाया, धन दान दे दिता सेवा है, दान सिमरन नहीं है। और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होंदा, अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होंदा, दानी महा बेईमान होंदा, गुस्ताखी माफ है, बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है, बेईमानी करके धन कमाया, दानी बने होया, सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसे नूं कहिंदे ने, दानी नूं, सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए, दानी पाप करके धन इकट्ठा करता है फिर दान देंदा है, कहिंदा है मैं धार्मिक कर्म कीता, हद हो गई, जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालो दित्ता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया। गुरबाणी बहुत गहराई जांदी, इतना ना समझ लेना। अब मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कह तेरे चेहरे दे उत्ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती, एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती, तेरे व्यवहार दे उत्ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती, की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर ले। दान सेवा है, दो दानी लड़ पैंदे ने, दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा है, बड़ा भयंकर वध जांदा है। कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पे करदा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे नाही मोया साथ ना जाए, बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन इकट्ठा ही नहीं होगा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते ने किस तरह हो सकता है, जिहड़ा इकट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देन नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमाए, खैर धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सोझ बोझ नूं पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता, ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा है जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे, पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है, इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेक बेक को कह न सकत, अरूप है अनूप है। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, ए अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं, ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ਨਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਧੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜ਼ਬੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਅਮਜ਼ਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਚ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ।

तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़न दा है भी ये दरिया इराकी ने इराक दे उथे वगदे दजला फरात उथे वगदा नील नदी मिस्र दे च वगदी है तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है इजिप्शन है मिस्र दे च वगदी है उस इलाके नाल इसका संबंध है इसका नाम है थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है इसका नाम थेम है पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं सारिया का नाम इको हो जाता है कि सागर ना गंगा ना जमुना ना सतलुज ना ब्यास ना रावी ना चनाब ना गोदावरी ना नर्मदा ना दजला ना फिरात ना नील ना थेम जद भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना ना वो हिंदू है ना सिख है ना मुस्लिम है ना ईसाई है ना जैनी है ना बौद्धी है ना यहूदी है ना पारसी है जितने चिर तक पारसी है यहूदी है हिंदू है इतने चिर तक नदी ते है सागर नहीं है नहीं है समुन्द्र नहीं है मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे इतना ही कहना मैं कई बड़े तार्किक होंगे कट्टर बड़े होंगे और कमाल दी गल अकल तो बिना अकल दा दावा अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने दा दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है फिर पता की है किसे एक कद नूं अकल आ जाए ते इस तरह की गल कवे फिर कटो उसदे बंदवन बिठाओ उसनूं तत्ती तवी ते कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे ईसा सोली ते लटकदा पिया मोहम्मद साहब दे बदर दी लड़ाई दे अगले दो दंद तोड़ दिते गए सुकरात नूं जहर दा प्याला दे के मार दिता गया हुण पुछिए एक नूं तुसी सूली ते टंगया एक नूं जहर दे के मार रहे एक दे दंद तुसी तोड़ दिते एक नूं तत्ती तवी ते बिठाया एक नूं चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है फिर उन्हां दे फरजंद उन्हां दे बच्चियां नूं पोतरियां नूं तुसी दीवार दे चिणदे पाया किसे दे बंद बंद कट रहे हो किसे नूं उबल दी देख दे च बिठा रहे हो पहले दसो इन्हां ने चोरी कीती है यारी कीती है बलात्कार कीता है किधरे कतल कीता है एक भी जुर्म नहीं इन्हां दा एक कसूर है कि यह बेकसूर कसूर वारां दे कठ दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है मूर्खां दे कठ दे च इतना स्याणा हो जाना भी किसे वद हले ते मूर्खता हो जाती है देखो सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है लोग कहें कबीर बौराना इत बौरा है पागल है हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे सारे बनारस दे च इक्को ही ते स्याणा है बाकी दे सब पागलों की भीड़ है पर हुण एक सियाणा होवे ते भीड़ पागलों की होवे ते दुनिया ते बहु गिणती प्रभाव ते बहु गिणती दा घट गिणती दा ते है इस वास्ते डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने 1934 इस उत्ते तनज भी कर दिती सी जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते जमहूरियत डेमोक्रेसी लोकतंत्र जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते कहिंदा जमहूरियत की है डेमोक्रेसी की है गिनते अगर खोते 900 ने ते घोड़े सिर्फ 100 ने तो खोते जित जाणगे घोड़े हार जाणगे गिद्दड़ 900 ने ते शेर सिर्फ 100 ने शेर हार जाणगे गिद्दड़ जित जाणगे गौवां सिर्फ 100 ने ते सूअर 900 ने गुस्ताखी माफे सूअर जित जाणगे गौवां हार जाणगे मैनू कहण दिओगे बहुत सारे मुल्कां दे सूअर ही जित जांदे ने

0: ਗਊਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਬੰਦੋ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਯੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਯਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੇਂ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿੰਗਡਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੋ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਹਲਾਕੋ ਹਿਟਲਰ, ਮੋਸੋਲੈਨੇ। ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਓ ਤਿੰਗ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ। ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭੀੜ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੀੜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੌੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਲੋਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਚ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ, ਕੋਈ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋਜੀ ਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਰ ਦੇ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਾਏਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਕਾਰ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਨਰਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸਨਾਤਨ ਜਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਸੰਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਰਥੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਅਰਥੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो। अज ते तीन दिन हो गए, मैनू कहे गए ने सत दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ना, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत ले गए शमशान घाट, अग ला दी, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया, पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहण दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करन दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़दी, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिया ही मसंदा नू देहरादून विच जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने आपां जितने बैठे ने इतने सत्संग विच सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन, कि किसे सत्संग नो मन भावदा ओ देख लैन दूरों, ते इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ़ लैंदे ने, पहुंच जांदे। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत एडे डेरी हो जांदा, मिट्टी हो जांदा, सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा ना डे डेरी आउंदा। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिन दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदा। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ विच प्रवेश करन दी सहूलियत संसार विच मौजूद है। 13 दिन दे अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जांदी। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे, सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुन भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनीए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए, कदम अगे चलते रहे, कदम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहिंदे। ये 13 दिन दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे च प्रवेश कर जांदे। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं ने, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे, बड़ी सेवा कीती है, बड़ी बंदगी कीती है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रास्ते ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी, घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पेंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे ओ रस्ता केड़ा है, ओ पेंडा केड़ा है, हुण मैं अर्ज करा, ओ चलन दे नाल ही रस्ता बनदा, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावा। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलक है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा, मच्छी जैसे पानी विच चलदी है, ओदे चलन नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता नहीं, चलती है तो रस्ता बनता, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपण नाल रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता जपदे रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिर अंदर, मच्छी चल पई रस्ता बनता गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी, रास्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे, जिड़े चलते पे पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण ने। ये सूक्ष्म देह ही बहुत जल्द जन्म नहीं लेंदी, ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ दे च प्रवेश नहीं करदा। क्यों? जितनी वाट इसने तय की थी ये चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ दे च प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह की कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने, चल चल के जो उन्हां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये कम कोई ओ कर सकदा जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, ओ कर सकदा। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो। वड्डी भैण जहां आरा आई, उन्हों जद पता चलिया कि दारे नू भी मार देता है, सुने ऐसी उसने पहले शुजा नू मार देता है, मुराद नू मार देता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नू भी मार देता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी, और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी, सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैण इस बिरा नाल बड़ा प्यार कर दी सी, और बड़िया दुआवां देंदी सी, तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुंचावे, तेनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नू भी कतल कर दिता है। रोंदी हुई आई औरंगजेब कोल, पहले ते बड़ी ताड़ना कीती, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा, खुदा तरस बेरा, खुदा शनास जो सी, और बड़ा फैज दिल बंदा, फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तू उन्हों भी मार दिता है। कहिंदे अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हथ चुक लिया औरंगजेब नू मारन वास्ते, ए तो की कीता। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्हों बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये कम कोई ओ कर सकदा जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हरनाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना चेत पशुआं नूं मात कर गया है। 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हरनाकस कहिंदा तू जपया कर, जल हरनाकस थल हरनाकस, ताकि तेनू वेख के होर बच्चे भी जपन, ते असी निरंकार करके दुनिया दे च जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नू निरंकार ने दिती है, ध्यान नाल सुनना। निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे। ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे। तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले। ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले। उस महाशक्ति का ना ही ते परमात्मा और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है। होना चाहता है परमात्मा होण दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है। हर एक नूं दित्ती है। किस तरह परमात्मा वेखदा है सब कुछ वेखदा है। मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुणदा है। पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पिया सब नूं वेखदा पिया सब नूं सुणदा पिया सदा सुणदा पिया। ठाकर हमरा सद बोलनता सदा बोलदा पिया और उहदा बोल सारी दुनिया विच गूंज रिहा अनाहद ना। मनुख भी सुणदा है वेखदा है। मनुख भी समझदा है पर सीमित है। मनुख भी जाणदा है पर सीमित है। ये असीम होना चाहता है। असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है। परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके परमात्मा हो सके ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहता है बनाया ऐ जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर मलिक को देव को जिन को परी को ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआ दा भविष्य अजय मनुख होना है। वनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है। पत्थरां दा भविष्य ते अजय वनस्पति होना है। केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया इस साल दे जो लंघे मैं कानपुर दे सी सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम ब्याह करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं कह खैर होवे सही है अमृत वेले 4:30 कि कौन फोन करता है। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो भविष्य जानते हो। मैं कहा जानना भविष्य वक्ता भविष्य जानना। कहन लग्या कि फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी तुसी आ रहे हो असी पोस्टर भरे ने असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहो दो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी बहुत दिन पए ने मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे फोन ते दस दोगे। मैं कहा हुणे ही दस दें तो मेरा भविष्य की है। मैं कहा केवल तेरा ही नहीं तेरे सारे परिवार का सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी। चंगा कारोबार मिल गया है परेशानियां नहीं जानगी। बड़ी धन संपदा मिल गई रहन नूं उच्चा महल मकान मिल गया है बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया है नोटां दे अंबार लग गए ने व्याकुलता नहीं जाएगी। दुख नहीं जाएगा दुख नहीं जाएगा। बेचैनी नहीं जाएगी परेशानी नहीं जाएगी चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा उस तो पहले नहीं। दुख भी बनया रहेगा, संताप भी बनया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान होवे, दुख भी बनया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर होवे, दुख भी बनया रहेगा, कलेश भी बनया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़े हो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी, मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नु दिते हुए ने, सीमत ने, ये असीम हो सकते ने। उनु याद कर करके किवें उसनु याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया दा, और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फ्रह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसुनहार कूड़ सोयना कूड़ रूप।

तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ है। देखदे आं असीं सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई विच मोती पए ने। उपर नहीं मोती मिलदे, किनारे ते नहीं मोती मिलदे। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ए गहराई दे चे। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोज दिया उसनु नौ खजाने दी प्राप्ति हो जाएगी, नौ दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने, गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वाजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है, ओ दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नू ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहिंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है, जमीन नालों तीन हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरे होया फैले होया ए सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरे होया है पानी, समुंद्र सहा सुल्तान, इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इसदे घर दे हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन। गिरहा सेती माल धन, जमीन दे उते जितने पहाड़ ने, इतना इसदे घर दे सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन। कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे, ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं, जो समाधि लीन हो गई है, इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है, उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है। कीड़ी गिणती मिणती च नहीं आउंदी, कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी। जिस बंदे दी कोई जात नहीं, पात नहीं, कुल नहीं, जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं, सामाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, हर पासे पछड़े होया है, और किसी दी निगाह भी उस ते नहीं पैंदी, बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले, बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले। पर सतगुरु कहिंदे जे उसके हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए, ओ किधरे अंतरमुखी हो जाए, तो इतना वड्डा बादशाह भी उसके पैरां दी खाक नहीं। क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है ओनू महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है, जिवें उपर लेबल लगे होया अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जैसे कोई मन विच प्रवेश करता है, गीत मिलते ने, संगीत मिलता है, दर्शन मिलता है, फिलसफा मिलता है, पर ये सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है, होर अगे जाना है। सत्संग दा यही लाभ है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनु सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके, होर गहरा जा सके। घबराहट आउंदी है, गहराई दे उतरदे आ। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, आशा ते बजदी है,

शौक ते वद्दा है, पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जांदा है। होर गहरे जाइए, होर गहरे जाइए। कदी कदी कोई साहस जुटांदा है, जप करदा है और बाणी सुनदा है, बहुत सुनदा है, बहुत जप करदा है और जैसे अंतर्मुखी होके ध्यान नूं होर गहराइयां दे चले जांदा है, तो रिधियां ते सिधियां उसका स्वागत करदियां ने। पहले गीत संगीत मिलिया, दर्शन फिलसफा ए मिलिया, हुण रिधियां मिल गईयां, हुण सिधियां मिल गईयां, हुण ए सिद्ध हो गए, ए सिद्ध पुरश हो गए। इदे बोलां दे च बरकत आ गई है, इदे हत्थां दे च शक्ति आ गई है, इदे कदमां दे च क्रांति आ गई है। जिस पासे इस दे कदम जाणगे, अपने नक्श चैन छोड़नगे, अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे, लोगां लई मार्ग बनेगा। इस दे हथ जिस पासे पसरनगे, महान उसारू कम उत्पन्न होणगे, उपज होणगे। और इस दी दृष्टि जिस ते जाएगी, अमृत बरसाएगी। इदे बोलां दे चों महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते लै जान, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਦੇ चरण अपने घर पवाईए, क्योंकि पैर आम पैर नहीं ने। इदे हत्थां तो असीस लईए, इदे हत्थ आम हत्थ नहीं, और इदे बोल सुनिए, ए बोल आम बोल नहीं ने, खास बोल ने। हत्थां नाल, पैरां नाल, बोलां नाल आदि काल तो साडे देश दे श्रद्धालु लोग संबंध जोड़दे रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और परमात्मा दी दुनिया शुरू हो जाती है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे कोई होर अंदर प्रवेश करता है, होर गहराइयां दे च जांदा है, और गहरे जान दा इक्को ही तौर तरीका है, जप। तो समाधि लीन हो जांदा है। सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाई अचरज बिस्मार। महान बिस्मादी अवस्था उसकी बन जाती है, परम आश्चर्यता प्रकट हो जाती है, और अफुर अवस्था उसकी हो जाती है। तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई। उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है जिसनु परमात्मा कहंदे ने, जिसनु ईश्वर कहंदे ने, जिसनों परम व्यापक शक्ति कहते ने। बस उस तक पहुंचते हैं, इस समाधि लीन हो जाता है, और ऐसी समाधि जिड़ी फिर कदी भंग नहीं आती। ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकता, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थले नहीं आउंदा, इस तरह की अवस्था नूं कहते ने कि इस नूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचे होया मनुख, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਲੋਭ ਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ अहंकार का बनिया रहिंदा है, समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के, मन दी दुनिया तो पार हो के,
कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। उन जो कुछ हो रहे है, जैसा हो रहे है, सब कबूल। दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नू बहा लेंदा है, विरोधता नहीं करदा। ए दरिया, जिस पासे हुण तू ले जाना है, मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दिच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा, थकेगा। और दुनिया दिच ऐसा ही हो रहा है, बहाव दे नाल अपने आप नू बहा लेना, इसे नू कहंदे ने रब दी रजा दे। इसने अपने आप नू जोड़ लिया है, जिधर रब रजा है वैण ते दाऊं गाऊं करे। जिस पासे हुण रब दी रजा है, बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नू तोड़ देता है, जिंदगी नू छोड़ देता है, ईश्वर दे आसरे ते, प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा। खोजदिया खोजदिया मन तो पार होए, तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोरा अभय भगतें जन दियो।

0: रामचंद्री राग के अंदर धन गुरुनानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन जिधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों कहीं जापता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वकत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। तिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नू कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष दे कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष दे कण भी हैं और नारी दे कण भी हैं। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि उसके अंदर पुरुष दे कण ते पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध हम और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी दे कण ते पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल नूं ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने यह गल अंदरों से तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग है, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाहर की कशिश पैदा करता है, पुरुष दे अंदर नारी की कशिश, नारी दे अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जिहड़ी संपूर्णता है ये पशुआ की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये कोल सोचनी है, ये कोल विचार ने। तो इस समाजिक रकम धर्म के दायरे चलाने की आग्या हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी भी लगे और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ध अंग की संपूर्णता करते सन। तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमत विच यह नाम रखा गया आनंद कारज, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, एक पुत्र भी है, एक पड़ोसी भी है, एक दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की भैन भी है, किसी की भैन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है। और फिर किसी भी पत्नी सारे रिश्तों में पकियाई होवे पवित्रता होवे इस वास्ते विचोला चाहिदा सी तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भराव बने ते चंगा बने लोकी मान करन के भराव होवे ते ऐसा होवे ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने और ये पुत्र बने ते ऐसा के मां बाप फकर करन ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने खुदी खुशी बने हू बहु इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी ते बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन साडे घर का खिड़िया होया फुल से पहले महक वंडी पेके कर दे हूं महक वंड रही है सौरे कर और मां बाप की खुशी बनी रहे महक फैल रही है खुशबू फैल रही है एक पत्नी बने आदर्शवादी भैन बने महान दया मान कर भैना मान कर सारे रिश्तों में पख्याई से पुख्तगी लाजमी है कि पत्नी होवे तो ऐसी कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति और पति मान करे तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे किसी महान नाल संबंध जोड़े और इन्हों दो आत्मावान के संगम इन्हों दो शरीर के संगम कोई मदद चाहिए है जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं दोहां नूं जोड़ने तीसरा चाहिए दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है दो कपड़िया जोड़ना है कोई धागा चाहिए दो इटा जोड़ना है तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है दो लकड़ा नु जोड़ना है श्रेष्ठ किल कुछ ना कुछ है चाहिए दो दिलों नु जोड़ना है इतने दो दिल जोड़ने दो विचार जोड़ना दो ख्याल जोड़ना तो थोड़ी से चाहिए है बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नु इक करता है दोहां से मोर लांदा है ते हुण मैं दो मिनट आपके होर गवां ते समाप्ति करा रिश्ते दुनिया के दो तरह के खून के रिश्ते ख्याल के रिश्ते विचार के रिश्ते मन का रिश्ता जेडे खून के रिश्ते ने इन्हों प्रणालियां तीन ने नानके दादके सौरे बे खून का रिश्ता दादकियां नानकियां फिर सौरिया पर नानके दादके ते सौरिया के रिश्तिया जिथों जन्म मिलता है पति पत्नी तो यह रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है बच्ची किसी घर की बच्चा किसी घर का खून एक नहीं है किस तरह कहा जा सकता खून एक है यह खून एक नहीं है तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी नहीं मनिया सतगुरु की बाणी कहती है यह दिलों की सांझ है विचार की सांझ एक जो दोए मूर्ति बन फिर कहिए सोए महाराज कहने असी पति पत्नी उसनू कहने विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही वरना नहीं जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा आंदा और जिथे प्यार है उसते एतबार भी आंदा एतबार भी मनुख का उसे नहीं जाता और जिथे एतबार है कहने सदाचार का वास्ता भी उसे ही है और जिथे सदाचार है करतार दिया सारिया बख्शिशा भी उसे करतार दिया सारिया न्यामत भी उसे ने आप सारे सियाने बैठे बच्ची बच्चे भी ऐ बिताने सियाने ने यह रिश्ता विचार की सांझ का है ख्याल की सांझ का एक जो दोए मूर्ति ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਏ ਮੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਕੀਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਕੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਥਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗੜਾਉਣਗੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 18.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 20.99 ਦਾ, ਰੋ ਆਲਮੰਡਸ 5.99 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ 216 ਇੰਡੀਕਨ ਟੀ ਵਾਲਾ ਪੈਕ 5.99 ਦਾ।
3: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
4: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
3: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ @604-581-1900।

0: नवी लोकेशन साउथ सिटी विच खुल गई है 2990152 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 7 अगस्त तो 12 अगस्त तक। बीसी चेरीज 2.98 नु पाउंड, रोमा टोमेटोज 98 सेंट्स नु पाउंड, धनिया लवो 69 सेंट्स दी गुच्छी, 800 ml पाकिस्तानी रूह अफजा 3.98 दी बॉटल।
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

को के नौ में फिर परमात्मा मतलब ते नहीं है तेरे नौ तो की करिए कुछ लेना है तेरे को कुछ मिल सकता है तू वक्त सिर कम आ सकता है इस वास्ते तेरे नाल संबंध जोड़े है उंज तेरे नाल कोई मतलब नहीं कोई मतलब यह रिश्ता मनुख मनुख नाल जोड़ सकता है यह रिश्ता मनुख गुरु नाल जोड़ सकता है यह रिश्ता मनुख प्रभु नाल जोड़ सकता है लैण का रिश्ता लोभ का रिश्ता अपने लोभ को कीनों में मैं एक दफा दौड़ा के फिर अगे जो है चला टुकर पाई जाओ कुत्ता पिछे आई जाता है पट्ठे पाई जाओ गौ पशु पिछे आई जाता है गई जाओ संबंध जुड़े रहते हैं इधर देना बंद होया इधर संबंध टूट गया अपने लोभ को कीनो में मित्र बनाया है अपने लोभ की खातर कम आ जाता है वक्त सिर कम आ जाता है लोड़ पैर से कम आ जाता है कुछ कम इस तो सवर सकते हैं इस करके चंगा लगता है उंज इस नाल कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं प्रेम का संबंध तेरा होना ही काफी है तेरे को कुछ लेना नहीं है तेरे तो सदके जाना है कुर्बान जाना है निछावर जाना है प्रेम निछावर होना चाहता है सदके होना चाहता है कुर्बान होना चाहता है लोग दूजे की कुर्बानी लेंगे बगौर मुकाबला करना लोग तो दूजे को कुर्बान करना चाहता है प्रेम दे मनुख स्वयं कुर्बान होना चाहता है भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों दस्त वस्ता अर्ज करते हैं गुफतम के जान दे हम दाता अज मैं सोचता सी थोड़े कदम च की रखा की रखा सब कुछ मामूली लगता सी सब कुछ तुच्छ लगता है की रखा फिर मैं ये गुरुदेव सोचे है कि जान मेनू बड़ी प्यारी है अपनी सब तो ज्यादा जान ही प्यारी होंगी महाराज जे कबूल करो ये जान थोड़े कदमों च रख देना गुप्तम के जान दे हम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रमाण करते हैं नंदलाल तू व्यापारी का लड़का है तेरा पिता बहुत बड़ा व्यापारी सी फिर दीवान बनया व्यापार खड़ा है देन ते लैण ते लैण ते देन लैना ही लैना है लैना ही लैना है देना कुछ नहीं लो लैना ही लैना है लैना ही लैना है देना कुछ भी नहीं लो फिर ऐसा भी है देना है लेना है लेना है देना है व्यापार व्यापार देना ही देना है बदले च कुछ भी नहीं लेना दान दाता देना ही देना है बदले च कुछ भी नहीं लेना ये मनुख नू दाता बनांदा है देना है लेना है लेना है देना है ये मनुख नू व्यापारी बनांदा है लेना ही लेना है लेना ही लेना है देना कख भी नहीं ये मनुख नु सोम बनांदा मनुखा नु इन्हां तिन्हां श्रेणियां गिण सकते हैं सोम व्यापारी दाते सब तो ज्यादा भीड़ मिलेगी सोमा और कबीर कहिंदे ने सोम बंदा धन दा चौकीदार आउंदा है मालक नहीं आउंदा सोमे धन राखन को दिया मुकद गए धन मेरा ये धन तो ना आप सुख लवेगा ना बच्चिया नु सुख लैण लवेगा वह चौकीदारी करेगा यह चौकीदार ये रखवाला है ये मालक नहीं इस हिसाब नाल मनुखता नु तीन हिस्सों च वंडिया जा सकता है सोम व्यापारी दाते

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.